0: शरीर को अनुचित कार्यों से दूर रखने और इसे सत्कर्मों के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने पर स्वामी ने विशेषतः बल दिया है। जब हम स्वामी के इन प्रेमास्पद शब्दों पर पूर्ण विश्वास करेंगे और साधना के रूप में उनका आचरण करेंगे, तब हमें अवश्य दिव्यानुभूति प्राप्त होगी। अस्तु।
1: अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 6 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।
2: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.

गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यो मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास ग्रास माले करता कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणै कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना।

जलमत वड भागे तेजन रघुमाए सदा सहर के गुण गाए राम नाम जो करे बिचा से तनवंत करे संसार मंत्र में बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने।